communicated with their audiences. He was responsible for some of the most iconic ad campaigns, including the Favicol ad featuring the tagline, "Majboot chod hai, tootega nahi." Yaad aaya kuch? He also mentored young filmmakers and helped them find their voice in this crowded place of what we call as entertainment. आज के एसीडी देसी के स्पेशल एपिसोड में हम सुनेंगे कुछ गाने इन्हीं की फिल्मों के और याद करेंगे इनको फॉन्डली इनके आर्ट और क्राफ्ट के लिए. आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ और ये है एसीटी देसी जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 इन कैनबरा और अब 4 इन इंडिया ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल पावर रेडियो. नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम.

सतीश कौशिक की लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ। शायद आपको पता हो, शायद आपको ना पता हो, लेकिन ये जो मैंने स्क्रिप्ट तैयार की है, ये एक आज की टेक्नोलॉजी जो आपने शायद, जिसके बारे में पता हो आपको, GPT, चैट GPT का हेल्प लेके मैंने किया है, और हो सकता है इसके अंदर कुछ त्रुटियां या कुछ गलतियां हों, तो अगर ऐसी कोई गलती लगे आपको तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि एक टेक्नोलॉजी के साथ कैसे आप हेल्प पा सकते हैं आपके काम को और अच्छा बनाने के लिए, उसको ट्राई एंड टेस्ट किया है। So here it goes. Satish Kaushik was born on 13th of April 1956 in a small village in Uttar Pradesh. He completed his education in Delhi and began his career as a theater artist. Kaushik made his film debut in 1982 with Shekhar Kapoor's Masoom in a minor role, but he acted in several films in the 1980s and 90s, including Ram Lakhan, Karz Chukana Hai, Mr. India, साजन चले ससुराल। और मिस्टर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा कैलेंडर का वो रोल जिसमें वो शेफ बने थे और बहुत सारे बच्चों का खाना बनाते थे,

अनिल कपूर जिस फिल्म में एक घड़ी मिलने की वजह से गायब हो जाते थे और बच्चे उनको ढूंढ नहीं पाते थे, और अमरीश पुरी का आइकॉनिक रोल कौन भूल सकता है। पर हाल इन 1993 ही टर्न टू डायरेक्शन विद हिज फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा। और उतार चढ़ाव जो हमारी लाइफ में आते रहते हैं, और ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका कि बहुत ही एम्बिशियस फिल्म जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया गया मनी और यू नो रिसोर्सेज का, लेकिन वो फिल्म कमर्शियल फेलियर थी। बट लेटर उसका यू नो एक कल्ट

Satish Kaushik was also a popular television personality and has hosted shows like Chote Miyan and Razzmatazz. 90s ka aur 2000 ka early sama jisme, you know, ye shows aaya karte the television mein aur aap sabne shayad ye dekhe bhi ho. He has also appeared as a judge on several reality shows including Indian Idol and Jhalak Dikhla Ja aur latest recently jiska keh sakte hain hum 2018 mein before all the COVID things have occurred. Satish Kaushik acted in the film 102 Not Out with Amitabh Bachchan and Rishi Kapoor. आशा करता हूँ ये कुछ ट्रिविया आपको उनकी यू नो मेमोरीज या उनकी जो माइलस्टोन्स हैं लाइफ में उन्होंने अचीव किए हैं आप उनको याद करेंगे फॉन्डली रिमेंबर करेंगे. ऐसी ही कुछ और चीज़ें मैं लेके आऊँगा प्रदीप सरकार के बारे में लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. कहीं जाइएगा नहीं, मैं बस यूं गया और यूं आया. आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ और ये है ACT देसी का सतीश कौशिक एंड प्रदीप सरकार ट्रिब्यूट.

एडवर्टाइजिंग एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप ऑडियंस से इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं, और फिल्म्स जैसे हम जानते हैं कि बहुत लंबी होती हैं और एक घंटे से लेके तीन घंटे तक, या आजकल शॉर्ट फिल्म्स भी बनती हैं 10 से 15 मिनट की, बट कैसे 30 सेकेंड, 5 सेकेंड और 10 सेकेंड में ऑडियंस को हुक किया जाता है, ये एडवर्टाइजिंग के थ्रू होता है, और प्रदीप सरकार वॉज मास्टर ऑफ दिस क्राफ्ट। चलिए आइए जानते हैं उनके बारे में, थोड़े से माइलस्टोन्स जो मैंने लिस्ट बनाई है आपके साथ मैं शेयर करता हूं एसीटी देसी के इस एपिसोड के जरिए। प्रदीप सरकार बिगेन हिज करियर इन एडवर्टाइजिंग एंड वर्क्ड विद सेवरल वेल नोन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इंक्लूडिंग लिंटास एंड कॉन्ट्रैक्ट। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसी एपोकलिप्सो फिल्म वर्क्स, which was later acquired by Rediffusion. He also directed commercials for brands like Coca-Cola, Cadbury, Bajaj, amongst many other. Sarkar made his directorial debut with the critically acclaimed film Parinita 2005, which was based on the novel by Sarat Chandra Chattopadhyay.

एंड में बस यही कहना चाहता हूँ कि सतीश कौशिक एंड प्रदीप सरकार वर टू लेजेंड्स ऑफ द इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड. They were both gifted storytellers who had a unique ability to capture the human experience and bring it to life on screen. Today, we pay our respects to them and celebrate their lives and their work, which will continue to inspire generations to come. आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड आज का पसंद आया होगा और एक स्पेशल एपिसोड जिसमें हमने इन दो यू नो स्किल्ड आर्टिस्ट को याद किया जो अपनी लेगेसी छोड़ के चले गए हैं. ऐसे ही बहुत सारे और एपिसोड्स और एंटरटेनमेंट कैप्सूल्स मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा एसीटी देसी पे. डू ट्यून इन टू 2XFM 98.3 पीपल पावर रेडियो या आप मेरे फेसबुक पेज जो कि है facebook.com/ACTDesiFM या मेरी वेबसाइट content-artist.com पे जाकर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी राय सुझाव क्रिटिकल यू नो कमेंट्स आप छोड़ सकते हैं मेरे लिए. और कुछ अगर आप फॉलोअप करना चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर तो आप अपनी यू नो वॉइस मुझ तक पहुंचा सकते हैं. तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा. जब तक हम मिलते हैं दोबारा अपना ख्याल रखिएगा.